हिलता इश्कहता एटम वाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्कहता एटम।

वाम हिलता इश्क हता एटम वाम हे गंगू तारुण्य तुझ बे भाम हिलता इश्क हता एटम

हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला ठिला आगो हिल हिल पोरी हिला तुझे कप्पा लीला ठिला तुझे कप्पा लीला ठिला तुझे कप्पा लीला ठिला गो फैशन मराठी सोबई तू।

0: चला एक वेगळं गीत आत्ताच आपण ऐकलं, पहिल्यांदाच ते प्रसारित देखील आपण केलं. तर गाण्यांची फरमाइश घेऊयात. आज बऱ्याच दिवसानंतर ज्यांची फरमाइश आली, पांडुरंग ढेरे पाटील सर, करमाळा सोलापूर येथून आज बऱ्याच दिवसानंतर फरमाइश आली आहे त्यांची. तर ते म्हणतात तुम्ही रिप्लाय पण नाही दिला मॅडम, मेसेज पाहिला नाही की आम्हाला पण भीती वाटते तुम्ही रागवता की काय. आता नाही सगळ्यांसोबत नाही रागवत मी. तर सर नक्कीच फरमाइश पूर्ण करते. ऐकूयात तत्पूर्वी ऐकूयात एक फीडबॅक देखील. आपले नियमित श्रोता आहे सैफ शेख सर, काय म्हणतात ऐकूयात त्यांच्याच आवाजामध्ये.
1: नमस्कार, मैं नाईकवाडे नगर तालुका मोहोड जिला सोलापुर से सैफ शेख बोल रहा हूँ. मैडम आज मैंने आपको किसी फरमाइश के लिए वॉइस नहीं डाला है, क्योंकि मैं सिर्फ फीडबैक देने के लिए वॉइस डाल रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, तो इसे कृपया शामिल कर लीजिए. जिंदगी इस थीम को लेकर जो पेटे सर ने जो स्वर बहार प्रोग्राम पेश किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही दिल को छू गया. और आपने जो बिग स्टार एसपीजी के ऊपर जो किया था, वो तो मुझे बहुत इतना एक नंबर लग गया, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा. एसपी बाल सुब्रमण्यम पर जो आपने बिग स्टार शो किया, मुझे और कुबीर जी को भी बहुत अच्छा लगा था वो बिग स्टार शो. और उसी तरीके से जो पेटे सर ने जो और एक स्वरबहार प्रोग्राम पेश किया था इंतज़ार इस थीम को लेकर, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिल को छू गया. इंतज़ार थीम से जो गाने चुने थे बहुत पसंद आए, और उतना ही बेसब्री से इंतज़ार हम पेटे सर का कर रहे हैं. और पता नहीं हमारी ये इंतज़ार की घड़ियाँ कब खत्म होगी. हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पेटे सर आएंगे और हमारे लिए वो लाइव शो पेश करेंगे, ऐसे उम्मीद करते हैं. और फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. आप भी लाजवाब शो कर रहे हो व्हाट्सएप पर. मैं कल का बहुत बढ़िया हो गया था आपका, बहुत हमें पसंद आया डायलॉग जो श्रोताओं को कहने का मौका दिया था आपने, और मेरे भी कुछ डायलॉग थे उस शो में, तो बहुत अच्छा लगा. और ऐसी नई नई थीम को लेकर आप करते रहिए शो. धन्यवाद.
0: थँक यू सो मच सैफन शेख सर. आम्ही देखील वाट पाहतोय कधी पेठे सर येतील म्हणून. तर नक्कीच लवकर येतील अशी आशा आहे. तर ऐकूयात जे आपले श्रोते आहेत ढेरे पाटील सर यांची व्हॉट्सअप फरमाइश.

मैं एनी। मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते। मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज़ हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज़ और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं। है ना ये नामुमकिन सपना, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: अपन ऐकताय रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज, सुरेल संगीत, विविध घडामोडी, शेती, महिला, युवक यांचं व्यासपीठ, सुरेल संगीताचा नजराणा रेडिओ तेरणा, ऐकत रहा, आनंदी रहा, रेडिओ तेरणा 90.4 FM, आपली माणसं आपला आवाज।

कसम, तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पट्टा फेंकी लड़ी है।

0: जीना तो चाहता हूँ लेकिन प्यार में।
1: तो फिर मरना चाहते होगे?
0: हाँ लेकिन वो भी प्यार में।
1: अच्छा।

तेरी बेटी क्या चाहती है और तू उसे क्या दे रहा है। तू बाप है या मेरा व्यापारी है? ये तेरी बेटी है बेईमान, ये नोटों की कोई गड्डी नहीं है जिसे तू सुधीर भाई के काले धंधों में लगाने की सोच रहा है। क्या बेटी के सुख की कोई अहमियत नहीं? जरा देख, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फूल से बच्चे तो सुधीर भाई को ललकार सकते हैं, एक तू है जो अपनी जान बचाए।

0: जो किया न हो किसी आशिक ने कुछ ऐसा कर जाए।
1: सौ बार जन्म ले तेरे लिए तेरे इश्क में मर जाए।
0: जो किया न हो किसी आशिक ने

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले तो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: अच्छा,
1: अरे हाँ वो चोर की शक्ल है गोरी।
0: तो क्या हुआ,
1: हो गया मिलना बहुत जरूरी।
0: चल पगली,
1: फिर सुनो तो आगे हमारी।

0: आजादी हो,
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो।
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।

0: वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला। बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।